0: ने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 0208150 2025 और विजिट meraboiler.com। T&Cs अप्लाई। अरे मुझे हेल्प कीजिए ना, मुझे कई गिफ्ट्स चाहिए।
1: तो वसीम ज्वेलर्स आए।
0: और शादी की ज्वेलरी भी चाहिए।
1: तो वसीम ज्वेलर्स आए।
0: और हमारे सोने की वैल्यूएशन।
1: तो वसीम ज्वेलर्स आइए।

छाप पड़ती है, वो तितलियां साथ रखती है। मेरी दुनिया अबाद लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।

0: Love Sunrise?
1: Uh-huh.
0: Like us at facebook.com/ This Is Sunrise Radio.
2: देखिए क्योंकि अब आपके सामने तशरीफ ला रही हैं आगरा की अजीम फनकारा मलिका हुस्न नूर नजर मोहतरमा

0: available at all Quality Foods outlets and other leading ethnic outlets across the UK.
1: आज भी जलसा, कल भी जलसा, हर मौके पे जलसा ही जलसा. घुघरा

0: Celebrating 25 years of Gadar. Monday, 15th June, 6 p.m. onwards. Only on Zee Cinema. Available on Sky 708, Sky Glass 713, Virgin Media 810, BT 395.
1: Flying to India or Pakistan? Book with Southall Travel. Unbeatable prices guaranteed. Find a cheaper ticket within 24 hours and we'll refund the difference. Call 0208-574-8410. 24 hours a day. Southall Travel. At all protected.
2: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका. अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत. 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड. और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी. तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 0208150-2025 और विजिट मेरा बॉयलर.com. T's and C's apply.

0: celebrating 36 years of excellence.
1: The greatest station, radio station in the world. Sunrise Radio.
0: This is Sunrise with the latest news headlines. Next.
2: Sunrise Radio.
3: हर केस में कम से कम एक विटनेस तो होता ही है. मर्डरर खुद. VCDD रीटा ब्राउन, कोलकाता पुलिस.
4: आपका और आना का रिलेशन कैसा था?
3: Stop trying to read my mind.
5: Get ready for a black case.

0: अच्छे हम अकेले
1: जालिम साथ लेले,
0: अच्छे हम अकेले
1: चार कदम भी चल न सकोगे समझे।
0: हाँ समझे।

0: हो रहना किसी के
1: क्या करना है दीदी।
0: अरे हो रहना किसी के
1: अंदर है तो याद करोगे समझे
0: समझे।

वो फराज की किताब पढ़ती है, वो तितलियां साथ रखती है, मेरी दुनिया आबाद लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।